0: क्या बोलते रहे उसको?
1: सफेद कलर।
0: अरे सफेद नहीं रे, व्हाइट व्हाइट
1: व्हाइट कलर।
0: हाँ, ये व्हाइट कॉलर वाले लोग है ना, इनको वो क्या बोलते रहे,
1: रेमानी कीड़ा।
0: हाँ, रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोग को। अरे आराम से रहने का ना बीवी बच्चे के साथ, लेकिन नहीं नहीं मंगता वो।
2: Yo, sipping up, we back.

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: इंग्लिश बोल के बताएं, कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताएं, आई लव यू।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

0: सी है और टूटा हुआ हूँ मैं, वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ मैं।
1: East FM, your radio, your music, 102.7.
2: चैन और करार खो रहे हैं हम, तेरे इश्क में बेकरार खो रहे हैं हम।

में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।